तरीका है ए जानवता स्थासिबुतु नियास आपू सांता मगदलेना सोफिया बारत कोमनर होरमरा नांगा केउन अंडा तुकु माइस किता सामसामा गावी बाबू बोए तुकु रोई बोरे गाई राकाडू